मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

करण सिंह और लता जी की आवाज में वारिस मूवी का ये गाना था, वर्मा मलिक के बोल और उत्तम जगदीश का संगीत था। वैसे एक आप एक बात बताइए, आपको सिर्फ अपने काम में बिजी रहना है या अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों से भरे दिनों की कुछ तैयारी भी करनी है? अरे भाई, मतलब इस महीने से आपको बताए, ऑफ कोर्स पता है कि सावन शुरू होने वाला है और अगले महीने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन है, यानी अब धीरे धीरे उत्सव के दिन आने वाले हैं, तो उन दिनों के लिए आपको अलग से ना टाइम निकाल कर रखना ही पड़ेगा। और क्योंकि ऐसे टाइम में ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है तो बारिश होगी, यानी चाय पकौड़ी और छतरी का मौसम होगा। और अभी तो दिल्ली में इस टाइम में आप देखेंगे बाहर तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मतलब अगर आप बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर तो सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑफकोर्स लगेगा, मैं तो खुद ही अभी स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, यानी चाय पकौड़े छतरी का मौसम। तो इस मौसम में खूब घूमने फिरने का मजा लीजिए और दिल्ली में तो घूमने को इतना कुछ है कि आप बोर हो ही नहीं सकते। अगर आपकी गाड़ी में सीट खाली हो ना तो मैं भी आपके साथ चलूंगा पक्का।

मिठाई की दुकान पर घेवर आ गया है, तो सोचा मेरी तरह घेवर के जो लोग शौकीन है उन्हें बता दो कि भाई मुंह मीठा करने का टाइम आ गया है। और वैसे हाँ, टाइम से याद आया कि भोर सुहानी शो का टाइम जो है वो पूरा होने वाला है और अगले घंटे मुक्ता होंगी आपके साथ अर्पण शो में, और मैं पंकज आपसे जल्दी मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। तो अभी के लिए मुझे भोर सुहानी शो से दीजिए अनुमति। नमस्ते।

0: चंदन का एहसास।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज, नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और

0: Murmu today said, India and North Macedonia have agreed to enhance trade and investment while expanding cooperation in key sectors. President Murmu was addressing the media in Skopje after holding talks with her North Macedonian counterpart.
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।

0: ഇന്നത്തെ രഞ്ജിനിയുടെ സമയം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. ഒരുപിടി നല്ല ഗാനങ്ങളുമായി നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങൾ ഒത്തുചേരാം.
1: രഞ്ജിനി
0: ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം, ഞാൻ ഷിജിൻ. സമയം 11 മണി. ഇനി FM ഗോൾഡ് പരിപാടികൾ.
2: നമസ്കാർ. ആകാശവാണി സമാചാർ കെ സാത്ത് മേ പ്രശാന്ത് കുമാർ. सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं. आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है. नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है. इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं. इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई. दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए. विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे. हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका. लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा. राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा. राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा. सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है. आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी. मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया. मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की

0: परीक्षा की प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues despite government assurance.
2: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
1: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case today. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Union Health Minister J.P. Nadda today visited Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in New Delhi and reviewed the condition of those injured during yesterday's protest in the national capital over the alleged NEET UG exam paper leak. The minister also held a meeting with the doctors at the hospital. Mr. Nadda also visited Lady Harding Medical College and Hospital and met the injured protesters who are admitted there. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra,

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Amit Goel.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार. धन्यवाद अमित जी.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेज फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेज एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का. निफ्टी 24,188 के स्तर पर बंद. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी.

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांक आज भी मंदी के दबाव में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 238 अंक गिरकर 77,470 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 51 अंक गिरकर 24,188 के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कारोबार की शुरुआत में ही निवेशक सतर्क बने रहे। पूरे सत्र में दोनों सूचकांक गिरावट के दायरे में ही कारोबार करते नजर आए। हालांकि ऐसी एनएसई मिड कैप सूचकांक में 0.3% और एनएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 238 पॉइंट्स और 0.3% टू क्लोज एट 77,470। The Nifty lost 51 points or 0.2% to settle at 24,188. Earlier, markets opened on a flat note as investors remained cautious amid geopolitical uncertainties and elevated crude oil prices. Both the indices traded with a negative bias for most of the range-bound session today. However, in the broader market on the National Stock Exchange, Mid-cap 100 index rose 0.3% and small-cap 100 index added over 0.5%.

0: हालांकि सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज मजबूती दर्ज हुई। बढ़त वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व 2%, इंडिगो 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% प्रमुख रहे। गिरावट वाले शेयरों में HDFC बैंक 2.1%, रिलायंस तथा स्टेट बैंक लगभग 1.5% और TCS 1.3% के नुकसान से बंद हुए।
1: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द BSE 13 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन। Among the top laggards, PSU banks dropped 0.8%, focused IT as well as IT slipped almost 0.7%, and top 10 bank index lost over 0.5%. In contrast, mid-small private banks quality tilt jumped more than 2.9%, Realty rose 1.1%, and commodities added 1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,188 advanced, 2,021 companies declined, and 190 remained unchanged. Vishal, the Indian stock market closed lower for the second consecutive session today. What were the reasons behind today's decline?
2: Well, largely, I would say that, you know, they're staying range-bound, both the Nifty and the Sensex as well. But yes, there is a marginal decline now. There's not much positive sentiment to go on. As I've been saying time and again, the markets do operate on sentiments, and those sentiments create momentums in the market, in the both negative and the positive, you know, category as well. But over the past, you know, 3-4 days, there has not been any huge sentiment which has been created. Although, and there is a, this one is a big although, because the foreign currency figures which have come in, those are really positive. And that impact is seen on the status of the Indian rupee as well. So that is there, and that is going to build the momentum in the, perhaps in the next few sessions. But nothing much more stronger to come by as of now. I think we should wait and watch as the market looks like is waiting and watching for the results of the June quarter as well. They've started trickling in, so far so good, but nothing extraordinary, I would say, to give that push to the market. That's one. Apart from that, the West Asia conflict, that is Iran versus US, that is something which is again flared up. And that flare up, although the crude oil prices are rising, but they're a bit steady. You know, the rise is not very sharp. And the overall sentiment in terms of, you know, both sides again confronting each other in the battleground is something which doesn't augur well for the energy sector. So there is some palpable, sentiment which is there in the market, but the market is yet to, try and understand whether it goes towards the negative end or it goes towards the positive end. Perhaps more positive results coming in from the June quarter. That's one. And two, as we move forward, we might see the impact of the money which has come in, the foreign currency which has been accumulated. Once that starts circulating in the system, we'll get to see a little bit more positive impact there.
0: विशाल, आपने चर्चा करी रुपए के बारे में, तो पहले मैं रुपए की जानकारी दे दूं अपने श्रोताओं को भी और आपको भी। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे की बढ़त से 96.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अब अगर हम वापस से घरेलू शेयर बाजार की बात करते हैं, आपने कहा बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है, ट्रिगर की आपने बात करी, क्या बाजार में, देखिए अगर हम ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तकरीबन 2200 कंपनियों के शेयर आज पॉजिटिव में रहे, लेकिन तकरीबन 2021 कंपनियों लगभग लगभग बराबर से ही रहे। और मोटे तौर पे अगर सेंसेक्स पैक की बात करते हैं तो 30 में से 21 कंपनियां पॉजिटिव में रोजी। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो शायद जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं वो वेटेज की वजह से हमको निगेटिव में नजर आ रहे हैं। क्या बाजार कुछ अभी जो चलने के लिए, जो आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं, वो ट्रिगर कहां छुपा हुआ है या कहां दबा हुआ है या क्यों नहीं आ पा रहा?
2: देखिए, बाजार हमेशा दो तरह के ट्रिगर्स पे काम करता है। पहला ट्रिगर आंकड़ों का ट्रिगर है, क्या कुछ बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, ग्रोथ के आंकड़े हों, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के आंकड़े हों, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हों, और ये वो समय नहीं है जब कुछ आंकड़े आ रहे हों या फिर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फैसला लिया गया हो या किसी और सेंट्रल बैंक ने कोई फैसला लिया हो। दूसरा ट्रिगर जिसपे मार्केट काम करता है वो है

0: इमीडिएट बिग इवेंट्स, मतलब क्या हलचल हो रही है देश में, विदेशों में, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात करते रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग पिछले 3-4 दिन से, बल्कि उससे ज्यादा समय से ये मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, अगर उस लिहाज से थोड़ी सी फौरी तौर पर नजर डाल के देखें तो समझ आएगा कि आज का जो सेशन था उसमें आईटी और मेटल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर रही, जिस वजह से मार्केट पर असर दिखाई दिया। उसके अलावा बैंकिंग की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग मेरे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ नजर डालें तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो कई बड़े प्लेयर हैं उनमें से एक दो की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन वहीं फिर अगर उसके निस्बत थोड़ा सा अगर जून जो क्वार्टर है उसके आंकड़ों की नजर उसकी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। तो वो एक जिसे एक स्पार्क जिसे कहा जाए, चिंगारी जिसे कहा जाए, वो चिंगारी अभी शायद दिख नहीं रही है, कहीं दबी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और 2-4 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई कोई ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 4 दिन पहले 5,000 अंक ऊपर गया था और आज जो है 2,000 अंक नीचे चला गया है। लगभग 100-200 अंक इधर से उधर हो रहा है, और वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा है, कभी कहीं, कभी ऊपर कभी नीचे।
1: तो क्या ये माना जाए कि बाजार में मतलब भरोसा तो है, लेकिन वो भरोसा अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहा?
0: जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो बाजार के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं, शायद टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़ों को पढ़ रहे हैं, जून क्वार्टर के आंकड़े जो आ रहे हैं उनकी तरफ नजर है, सरकार की जो पॉलिसीज नीतियां जो है उनके क्या फ्यूचर इंपैक्ट हो सकता है उस पर नजर है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का मोड़ आ सकता है उस पर एक नजर है।
1: इसके आपने बात करी सरकार के जो नतीजे हैं, देखिए सरकार ने दबे तौर पर ही या सीधे सीधे ना सही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम वापस से लागू करी जो कोरोना के समय पर लागू की गई थी। क्या इस तरह की चीजें, ब्याज दरें लगभग लगभग अपने जगह पर स्थिर हैं या उसमें कहीं ना कहीं और गिरावट ही है? बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में, एक आध बैंक ने कुछ 5-10 पैसे का जरूर इजाफा किया है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये सारी चीजें उद्योग जगत के लिए या जो हमारे मझोले स्तर हैं, एमएसएमई सेक्टर है जहां से बड़ी मात्रा में हमको रोजगार भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है, उनको रिवाइव करने की एक सधी हुई का प्रयास है जिसका असर देखने को मिलेगा? आपने बात करी कि पहली तिमाही के बहुत सकारात्मक या बहुत उम्मीद नतीजे नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति में ये नतीजे कुछ या ये कदम जो हैं वो कुछ स्पार्क पैदा करने में सक्षम होंगे?
0: जी बिल्कुल, और ये एक इसे मैं 2-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी कहूंगा, क्योंकि केवल और नतीजे सकारात्मक जरूर है लेकिन वही आपने कहा कि वो चिंगारी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक 2-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर बाजार की नजर जरूर है, और एमएसएमई सेक्टर को इस तरह का और बढ़ावा देना, इस तरह की स्कीम्स लेके आना, उसको ना केवल डोमेस्टिक लिहाज से बल्कि हमको इंटरनेशनल नजरिए से भी इसको देखना पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग देशों के साथ, यानी कि हम अपना सामान बाहर भेज पाएं, हमारे सामान की वैल्यू बाहर ज्यादा हो, और उसके लिए एमएसएमई सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है, ना केवल इंटरनल सप्लाई के लिए बल्कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी, तो उसको बढ़ावा देना लाजमी है, और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार इस तरह का इंटरवेंशन होता है खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्द से मेरा मतलब 3 से 6 महीने का समय हमें लेकर चलना चाहिए।
1: एक चीज और संक्षेप में यहां आपसे मैं जानना चाहूंगा, एमएसएमई सेक्टर के लिए इतनी बात करी, ब्याज दरें लगभग लगभग अपनी जगह पर स्थिर हैं, और अब वो कहां मानसून भी शुरुआती लड़खड़ाते कदम के बाद कहीं ना कहीं सधा हुआ नजर आना शुरू हो गया है, उसके सेक्टर में थोड़ी सी शुरुआती कमी नजर आई थी, ये सारे सेक्टर अभी भी मिलके वो स्पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
0: देखिए क्यों का जवाब तो अमित जी थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता है।
1: जी, जी।
0: क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि आपने मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई जरूर है, अब थोड़ा सा

0: जरूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना जरूरी रहेगा। और मानसून हमारे देश में खासतौर पे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे, उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नजर पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है, उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाजार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाजार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहाँ मिलेगा।
1: चलिए उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र जो आमतौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाजार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नजर आएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा। ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर स्ट्रेट साइम सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। विशाल, अगर पूरे तौर पे देखें एशिया और अमेरिका और अपने घरेलू बाजार को, शेयर बाजार की अगर हम बात करें, हमारे बाजार में कहीं ना कहीं मोटे तौर पे, चाहे अंकों के तौर पे, आंकड़ों के तौर पे गिरावट नजर आई एशियाई बाजारों में, लेकिन वहीं वो एक ठीक ठाक मजबूती नजर आ रही है। क्या जो मिडिल ईस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्थाएं मान चुकी हैं कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर हैं, या अभी भी बाजार इसके प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है?
0: देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा। अगर आपको 2-4-5 दिन या हफ्ता, एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सबने मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। ऐसा नहीं है कि वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहां कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना, और खासतौर पे ऐसी स्थिति पे पहुंच जाना जहां पे कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो, यहां केवल ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहां पे सप्लाई चेन की भी बात है, इसका सीधा असर सप्लाई चेन पे दिख रहा है। तो वो जो सप्लाई चेन है उसका असर हर इकोनॉमी को, दुनिया की हर जो अर्थव्यवस्था है उसको, हर देश जो है, हर बाजार जो है उसको झेलना पड़ेगा। हाँ, यहां मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ जिन्हें कहा जाए कि समझदार देश या समझदार अर्थव्यवस्था, जिनमें से हम भारत को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने रास्ते जरूर ढूंढे हैं और एक तरीका जरूर ढूंढा है कि हम किस तरह से माफ कीजिएगा, किस तरह से शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस तरह की जो मुसीबत है उससे निपट सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी निकाला जा सके उतना बेहतर है।
2: All right, moving on to the next big story of the day. US President Donald Trump has announced a 50% tariff on a range of Canadian imports, accusing the country of continuing to discriminate against American products. The White House said the new duties will take effect in 30 days. US President Trump's latest move has led to fears of a deepening trade war between the two close allies, as the relationship between Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney continues to deteriorate. Vishal, what could be the impact of such an announcement on stock markets worldwide?
0: Well, the tariff war unleashed by President Trump has had a lot of impact on markets across the world, economies across the world as well. And, these are fresh salvos in that conflict, the trade tariff conflict. But looks like, Canada has also made it very clear earlier that they're not going to bow down to any unrealistic demands or any undue pressure as well. But both sides largely understand one aspect also, that they will require each other. They are neighbors and they've been close trading partners over decades and centuries as well. So something which they can't wish away. There

0: Dow Index.
1: All right, perfect. Global crude oil prices gained today. Brent crude was trading over 1.7% up at $90.76 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading nearly 1.7% up at $83.87 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.9% up at 1,43,280 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% up at 2,23,620 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast ke vaida karobar mein sona 0.9% ki badhat se 1,42,608 rupaye prati gram ke star pe raha. Chandi bhi 2.1% ki mazbooti se 2,23,100 rupaye prati kilogram ke star par karobar karti nazar aayi. Vishal, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, जो कि शायद बहुत हॉट टॉपिक है, वापस से वही $90 के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये अभी आपके हिसाब से ठीक है, स्पेकुलेशन की बात नहीं है, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे आप कहां देखते हैं ये कितना अभी हमारे दर्द का कारण बन सकता है? दूसरा, इसी के साथ साथ आमतौर पर ऐसे देखा था, डॉलर मजबूत होता है सोना गिरता है, उधर डॉलर भी मजबूत है लेकिन सोने ने भी धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ानी शुरू करी है, पहले तेल फिर सोना.
0: जी बिल्कुल, तो पहले तेल की बात करते हैं. तेल पे नजर रखनी बहुत जरूरी है और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स चल रही हैं मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और अमेरिका के बीच, मुझे लगता है कि ये जो चाल अब क्रूड ऑयल के ऊपर की तरफ चली है वो थोड़े दिनों तक बरकरार रह सकती है और वो दर्द का कारण जरूर बन सकता है.
2: $100 के ऊपर तो नहीं जाएगा,
0: ये नहीं कह सकता कि नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीद तो हम सब करेंगे कि 95 से भी ऊपर ना जाए. और रही बात सोने की, तो आपने सही कहा, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त वो जो दोनों हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स पे दोनों चीजें काम कर रही हैं, डॉलर और सोना. लेकिन सोने को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सोने में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है और उस पे जरूर.
2: लगभग सभी धातुएं जो है काफी मजबूत स्थिति में हैं, ये कुछ चीजें क्या ये स्वाभाविक है या कुछ और भी वजह आपको नजर आती है?
0: अभी हमारे पास समय कम है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत वृद्ध टॉपिक है, इस पे चर्चा जरूर की जा सकती है, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त सभी धातुएं एक मजबूत स्थिति पे खड़ी है और उनका रिएक्शन अब मजबूती के ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा.
2: चलिए विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मन में आपके लिए, स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत लिया है हमने फिल्म साजन से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपके लिए।
1: शम की डोरी

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट फेज शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की एक पहल है। वेब्स ओटीटी के अंतर्गत माई वेब्स प्लेटफॉर्म पर आधारित इस चैलेंज में लोगों को अपने जिलों की अनोखी कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले छोटे वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी 1 से 31 अगस्त के बीच वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर माई वेब सेक्शन पर 1 से 3 मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इसे देशभर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत के जिनेवा में विश्व व्यापार

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर बात मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास वही होता है जब जहां किसी की एक झलक दिल की धड़कनों को बदल कर रखते और फिर हर बार उसी की आहट उसी का ख्याल हमारे इर्द गिर्द ठहर जाए और दिल बस एक ही ख्वाहिश करे कि काश वो सामने हो और ये वक्त यहीं थम जाए। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, जो इधर दिल में है या रब वो उधर पैदा कर। काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से या रब, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर, और दिल हमें दे एक और जिगर पैदा कर।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि वो थका हुआ मेरी बाहों में जरा सो गया था। तो क्या हुआ? वो थका हुआ मेरी बाहों में जरा सो गया था तो क्या हुआ? मैंने चांद देखा है किसी शाख गुल पे झुका हुआ। जी हाँ, सच्चा प्यार वक्त का मोहताज नहीं होता। बदलते मौसम, बदलते दौर और बदलती राहों के बीच भी दिलों का रिश्ता अपनी खूबसूरती बनाए रखता है। मोहब्बत की यही तो सादगी है और यही गहराई जो हर दौर में नई लगती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए कि उसकी मौजूदगी ही हर खुशी की वजह बन जाए और जिंदगी का हर रास्ता उसी से होकर गुजरता हुआ महसूस हो, जी हाँ यही तो है प्यार। ये प्यार का वही खूबसूरत एहसास है जो रिश्तों को अनमोल बना देता है। बहुत खूब कहा किसी ने कि ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो, अजनबी जैसे अजनबी तुम हो, अब कोई आरजू नहीं बाकी, जुस्तजू मेरी आखिरी तुम हो।

कभी कभी प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें ही दिल की हर बात कह जाती हैं, और एक मुस्कान अनकहे जज्बात को बहुत ही खूबसूरती से बयां कर देती है। आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल की लगी से आप, आशिक समझ रहे हैं मुझे दिल लगी से आप, वाकिफ नहीं अभी मेरे दिल की लगी से आप।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं निशिगंधा। जिंदगी हर किसी को हर दिन कोई ना कोई खूबसूरत तोहफा नहीं देती, लेकिन कभी कभी कुछ किस्मत वालों को कुछ ऐसे लम्हे मिल जाते हैं जो बरसों के इंतजार के बाद मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। जब प्यार सच्चा हो तो उसकी मुलाकात, एक मुलाकात भी पूरी जिंदगी को संवार देती है, खूबसूरत बना देती है।

खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। हंसो आज इतना किस शोर में, हंसो आज इतना किस शोर में, सदा सिसकियों की सुनाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे।

देखिए चलते चलते हम अपने अंजाम की तरफ ही आ चुके हैं और चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाएंगे आपको। एक और खूबसूरत सा गीत, बहुत खूब लिखा है किसी ने कि गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, किसी ने जिस तरह अपने सितारों को सजाया है, गजल के रेशमी धागों में यूं मोती पिरोते हैं, कहीं पानी कहीं शबनम कहीं आंसू भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं।

और इस गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुप्पुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई।

पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। गीत सुहाने लेकर मैं सुरभि आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और खूबसूरत लम्हों का भी साथी है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते बल्कि हर बार सुनने पर दिल को एक नई ताजगी दे जाते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं एक ऐसे ही सुरीले और सदाबहार गीत के साथ।

आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते, सर रखते हैं सर में नहीं सौदाए मोहब्बत, दिल रखते हैं दिल में कोई अरमा नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा, तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा। शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, शर्त कर लो फिर मुझे बर्बाद होना भी कबूल, खाक में मिलकर तो हासिल मुअद्दा हो जाएगा। तेरे होते इस सिफत का दूसरा हो जाएगा, बेवफा कहने से क्या वो बेवफा हो जाएगा।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर, कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए गीत सुहाने में अब आपको सुनवाते हैं नीला आकाश फिल्म का ये गीत रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में।

0: आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है। ये बात की सूरत के भले दिल के बुरे हों, अल्लाह करे झूठ हो, बहुतों से सुनी है। गजलों ने वहीं जुल्फ के फैला दिए साए, जिन राहों पे देखा है बहुत धूप कड़ी है। आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है।
1: यूं ही तुम

भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। आशिकी में बहुत जरूरी है बेवफाई कभी कभी कर ली। उसने देखा बड़ी इनायत से, आंखों आंखों में बात भी कर ली। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में

0: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ की बुआई की प्रगति, मानसून की स्थिति, उर्वरक और बीज की उपलब्धता तथा अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों की निगरानी करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीके एनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुपुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues.

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भटक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले। न कभी हमारे कदम बढ़े, न कभी तुम्हारी झिझक गई। मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे झपक गई।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि वो गजल बालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं समझता था मोहब्बत की जबां खुशबू है, फूल से लोग इसे खूब समझते होंगे। भूल कर अपना जमाना ये जमाने वाले आज के प्यार को मायूब समझते होंगे, वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

प्यार भरी नजर का जादू कुछ ऐसा होता है कि दिल अपनी धड़कनों का हिसाब ही भूल जाता है। एक मुस्कान, मासूम सी एक चुपके से उठी नजर और अनकहे एहसास, यही तो मोहब्बत की है सबसे हसीन जबान। और इसी दिलकश अदा और प्यार की मीठी कशिश से सजा है अगला गीत।

धीरे धीरे वक्त हमें अंजाम की तरफ ले आया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जी हाँ, जब मोहब्बत दिल में उतरती है तो हर गली रोशन लगने लगती है और हर शाम चांदनी से भर जाती है। किसी अपने की एक झलक, उसकी एक मुस्कान और एक मुलाकात का इंतजार, यही प्यार की सबसे खूबसूरत धड़कन है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिससे हमने दिन रात दुआओं में। तुम छत पे नहीं आए वो घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत लटका सावन की घटाओं में। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, फूलों की बदन वाली खुशबू सी अदाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में।

इसी गीत के साथ राज सुरमई का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब सुरभि को दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है।

0: इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह अभियान अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues, despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET, on NEET-related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Just a few minutes back, you told me that if I got assurance from the government, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP yesterday criticised Leader of Opposition and Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that the incident is unfortunate and termed it as a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the NEET paper leak issue, Leader of Opposition Rahul Gandhi backtracked from his earlier demand, which reflects his immaturity. Mr. Naveen also appealed to the opposition parties, including the Congress, stating that the government is ready for any kind of discussion in Parliament. He added that the people of the country stand with the Prime Minister Narendra Modi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day visit to Manila in Philippines today to participate in foreign minister-level meetings under the ASEAN framework, including the ASEAN-India, East Asia Summit and ASEAN Regional Forum meetings. On the margins of the ASEAN-related meetings, the External Affairs Minister will participate in a Quad Foreign Ministers meeting with his counterparts from Australia, Japan and the United States. He is also expected to hold bilateral meetings with his counterparts from participating countries. India yesterday delivered relief materials, including food items and family tents, to Afghanistan's National Disaster Management Authority to support affected communities in the wake of the floods in Nuristan. In a social media post, External Affairs Ministry said India stands with the Afghan people at this difficult time. The government yesterday said under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, a total of 58.63 crore Jan Dhan accounts have been opened as of the 1st of this month, holding a deposit balance of over 3.08 lakh crore rupees. He added that the government launched the National Mission for Financial Inclusion, namely PMJDY, in August 2013 to provide universal banking services for every unbanked household. Hockey India has announced a 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and Netherlands to be held from the 15th of next month. Ace defender and rack flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. And that is the end of this news bulletin.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 18 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्यार का रास्ता कभी सीधा साधा तो रहा ही नहीं, इसमें थोड़ी शरारत होती है, थोड़ा अलबेलापन और थोड़ा सा सुरूर। जब दो दिल इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो राह का हर मोड़ हसीन लगने लगता है। मोहब्बत का ये सफर जितना अनूठा है उतना ही अलबेला भी है। आइए ले चलते हैं आपको बीते हुए सुनहरे दौर में।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म धरती से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा है तो वो कभी नहीं झुकता, ना तो वह झुकता है और ना ही किसी को झुकाता है, बल्कि वह सर उठाकर हर तूफान का सामना करता है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म उमंग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार की डोरी जब दो दिलों के बीच में बंध जाती है, फिर न जमाने की कोई बंदिश न किसी का डर, फिर तो ये खूबसूरत प्रेम खामोशी में भी कितना कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म धरती कहे पुकार के से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई से।

अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। अखियां भूल गई हैं सोना, जाग जाग रातें ढलती हैं। तेरी यादों के चिरागों से पलकों की शामें जलती हैं। सोचती हूँ सो जाऊं किसी ख्वाब में जाकर, पर ख्वाबों में भी तेरी ही आहटें चलती हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और गीता रॉय की आवाज में फिल्म गूंज उठी शहनाई से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में फिल्म चोरी चोरी से अभी आपने गीत सुना। तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, तुम दूर जाओगे तो भी पास ही रहोगे, यादों के सहारे ही सही हमेशा दिल में रहोगे। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पारसमणि से ये गीत।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म अप्रैल फूल से अभी आपने गीत सुना। ना बंधन है ना फेरे हैं,

ना बंधन है ना फेरे हैं, एक एहसास है जिसमें हम तेरे हैं। दोस्तों, आपका और हमारा साथ भी ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आप हमारे लिए बने हैं और हम आपके लिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म इंतकाम से ये गीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कोहिनूर से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, अब हमराही कार्यक्रम से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में बनने वाले अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैनिक कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन यदि उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा शुरू की या हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया तो अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश का नेतृत्व सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और ईरान अपने फैसले मजबूती से लेता रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिनों में असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में तेज बारिश होगी। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday, following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance, NDA.

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को इस प्यारे से मौसम में मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक आशा होती है कि उसका परिणाम अच्छा हो, पर मन में अलग अलग विचार भी आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, पर फिर भी हमारे मन में एक उम्मीद की किरण तो जल ही जाती है। और दोस्तों, ज्यादा सोचना भी कभी कभी हमारी परेशानी का सबब बन जाता है, इसलिए जो होगा अच्छा होगा यही सोचकर आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। जिंदगी के कुछ पल इस प्यारे से मौसम के साथ बिताइए और साथ में सुनिए ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे, यानी फूल और कांटे दोनों ही होंगे, और अगर आपने दोनों के संग रहना सीख लिया तो जिंदगी अपने आप ही महक उठेगी।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म अनोखी रात से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मंजिल से।

उलझनों से भरी इस जिंदगी को, उलझनों से भरी इस जिंदगी को जरा बेफिक्री से जीना सीखो। आसमां तो वही है साहेब, बस तुम थोड़ा खुलकर उड़ना सीखो। आइए सुनते हैं नर्थ की फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म नया दौर से अभी आपने गीत सुना। छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले, छोड़कर सब फिक्र पीछे आ गए खुले आसमां तले, जब भी मिले फुर्सत के पल प्यार का जहां बसाने चले। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ही जिया जाए कि कुछ फर्क ही ना पड़े। ये अभी आपने गीत सुना सत्ते पे सत्ता फिल्म से, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में।

और दोस्तों, इस दुनिया में हम आए हैं तो सभी तरह से दुनियादारी भी निभानी ही पड़ेगी। चाहे है तो थोड़ा बहुत मुश्किल ही, पर फिर भी करना तो पड़ेगा ही।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दुनियादारी से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपजे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के व्यवसायियों, निवेश एजेंसियों और उद्योग जगत से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम और स्थानीय मूल्य संवर्धन के माध्यम से साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगे। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जाजोन्स्का दावाकोवा भी उनके साथ होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपजे संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। वे विश्व विरासत स्थल होरिड लेक भी जाएंगे। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर

0: लीग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे तिरुपुर के ओजाशी में लिंगवेश्वर शिव मंदिर का भी दर्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 18 मई को कैबिनेट के फैसले के बाद गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। कोलकाता के विद्युत भवन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा अगर शुरू करी या फिर होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया तो अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussions in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to the media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues despite government assurance.
2: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
1: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. BJP has criticised Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that the incident is unfortunate and termed it is a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the neat paper leak,

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह के इस सुहाने और शांतिमय माहौल में प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है शंकर महादेवन और साथियों ने।

दोस्तों, हंसी जिसका सुख केवल इंसान को ही मिला है, और जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर की सारी नसें, जो भी ब्लॉकेज है वो सब खुल जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज से ही हंसी को अपने दिनचर्या में शामिल करें।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मिली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर आप भी अपनी मंजिल की तलाश में चल पड़े हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बस दिल में जोश और जुनून कायम रखिए, फिर देखिए कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनोखा दान से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना ससदेवा। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म आजाद से।

दोस्तों, जिंदगी हर कदम पर एक नई चुनौती है। कभी अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है तो कभी कुछ बुरा। पर कुछ भी हो दोस्तों, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है और आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल इस गीत की तरह जो लिया है फिल्म मेरी जंग से नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।